0: नहीं नहीं नहीं रचति दुखं करणे नहीं नहीं रचति दुखं करणे
1: Thank you.